0: किसने तमो बने दे बाहर जो माता से रहता थे फल नो नहीं बोले अफेयर तक जो आता साउदी बाकुंडा से नो पूजा बत्ती में पिसन
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ठीक समय तम बजे बाहर जो माता से रही तक हिम फल नो नियो बोले अफेयर का जो रहता साउदी बाकुंडा से ना पूजा बत्ती में पिसन
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.